0: है कि इसे पंचकर्म चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, जहां शरीर को विष मुक्त करने के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक उपचार किए जाते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे शरीर छोटी मोटी बीमारियों से खुद को बचा सकता है। बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यदि हरड़ का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। हरड़ का उपयोग त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये त्वचा को अंदर से साफ करने में मदद करती है और रक्त को शुद्ध करती है, जिससे दाने, फुंसी और झाइयां कम होती हैं। बालों की मजबूती के लिए भी हरड़ का उपयोग किया जाता है। इसे तेल में मिलाकर सिर की मालिश करने से बालों का झड़ना कम हो सकता है और रूसी की समस्या दूर हो सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी हरड़ बेहद लाभकारी मानी जाती है। ये मासिक धर्म को नियमित बनाए रखने में मदद करती है और पीरियड्स के दौरान ऐंठन और दर्द को कम करने में सहायक होती है। इसके अलावा ये शरीर के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होती है। हरड़ मधुमेह के मरीजों के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाती है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या है, वे इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करें। अब सवाल ये आता है कि हरड़ का सेवन किस प्रकार किया जाए। इसे कई रूपों में लिया जा सकता है। सबसे प्रचलित तरीका इसका चूर्ण के रूप में सेवन करना है। इसे गर्म पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है, जिससे ये अधिक प्रभावी हो जाती है। कुछ लोग इसे त्रिफला चूर्ण के रूप में भी लेते हैं, जो तीन औषधियों हरड़, पहेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है। ये संयोजन पाचन तंत्र को अधिक प्रभावी तरीके से सुधारने में मदद करता है। हालांकि किसी भी औषधि की तरह हरड़ को भी सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। इसका अधिक सेवन करने से शरीर में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है और अधिक मात्रा में लेने से शरीर से आवश्यक पोषक तत्व भी बाहर निकल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए और इसके सेवन से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना उचित रहेगा। श्रोताओं, हरड़ केवल एक साधारण जड़ी बूटी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी है। ये पाचन को सुधारती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाए रखती है, मधुमेह को नियंत्रित करती है और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करें और इसके अद्भुत गुणों का लाभ उठाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकालीन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर होगा सुगम संगीत के अंतर्गत अनुराधा पौडवाल के स्वर में भजन। शाम 7:31 पर सुनेगा स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत वार्ता डॉक्टर अरुण तिवारी से, विषय होगा बच्चों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। साथ ही होगी एक और वार्ता डॉक्टर मालविका मिश्रा से, विषय होगा IVF सफर मातृत्व का। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम लोकायतन, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर संगीता अग्रवाल से। वार्ता का विषय होगा बरसात में स्वास्थ्य की देखभाल और आपसे बात करेंगी नीना सोनकर। कार्यक्रम खेती किसानी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर नागेंद्र कुमार त्रिपाठी से। वार्ता का विषय होगा पशुओं में सर्रा रोग, कारण और निवारण, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम नई उड़ान आप सुन सकेंगे शाम 5:45 पर। और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा अपने ही समय पर, यानी शाम 5

5:10 पर। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनिता श्रीवास्तव एवं कुमुद श्रीवास्तव के स्वर में अवधि युगल लोकगीत दोपहर 2:45 पर और प्रातः 9:50 पर। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान और किसान, जिसमें आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से। वार्ता का विषय होगा खरीफ फसल में कीट रोग प्रबंधन, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दोपहर 1:15 पर होगा हमारी ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता डॉक्टर सुप्रिया सिंह से। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें होगा प्रातः 11:00। उर्दू कार्यक्रम होगा प्रातः 9:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे कैंपस डायरी। ये कार्यक्रम हमारी आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। प्रातः 9:15 पर सुनिएगा चंदौली व बलरामपुर जिले की हलचल। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत होगा प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग होगा भटियार। अब थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। श्रोताओं, आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। मानव सभ्यता में आरंभ से ही चंद्रमा आकर्षण, जिज्ञासा और प्रेरणा का केंद्र रहा है। रात के अंधकार में अपनी शीतल चांदनी से धरती को आलोकित करने वाला चंद्रमा केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन काल में लोग चंद्रमा को देवता मानकर उसकी पूजा करते थे। वहीं आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से चंद्रमा तक पहुंचकर उसके अनेक रहस्यों का अध्ययन किया है। मानव की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। बीस जुलाई सन 1969 मानव इतिहास का एक स्वर्णिम दिन। इसी दिन अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे, जबकि माइकल कॉलिन्स चंद्रमा की कक्षा में स्थित कमांड मॉड्यूल में रहे। नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द, यह एक व्यक्ति का छोटा कदम है लेकिन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, आज भी विज्ञान के इतिहास में अमर हैं। इस महान उपलब्धि की स्मृति में

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक सहयोग व अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। अगर बात की जाए इस चंद्रमा की, तो चंद्रमा के कई महत्व हैं। अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी औसत दूरी पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वारभाटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी के घूर्णन गति को और जलवायु संतुलन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के समान है। इसकी सतह पर मौजूद चट्टाने और मिट्टी का अध्ययन करके सौर मंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रही है। चंद्रमा पर जल बर्फ की खोज ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक नई संभावनाएं भी खोल दी हैं। बात करें अगर भारत की उपलब्धियों की, तो जितने भी यान गए हैं चंद्रयान के नाम से ही गए हैं। जी हाँ, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान एक मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर जल के अणुओं की उपस्थिति का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके बाद चंद्रयान 2 ने अनेक वैज्ञानिक जानकारियां भी एकत्रित की। भारत ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। इस सफलता ने भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों की श्रेणी में स्थापित कर दिया और भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। बात की जाए अगर इसके उद्देश्य की, तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने के कई उद्देश्य हमारे इस इतिहास में माने जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना। बात की जाए वर्तमान में और भविष्य में चंद्रमा का महत्व, तो आज विश्व के अनेक देश चंद्रमा पर नए मिशन भेज रहे हैं। भविष्य में चंद्रमा पर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, वहां उपलब्ध जल और खनिज संसाधनों का उपयोग करने तथा मंगल ग्रह जैसे दूरस्थ अभियानों के लिए चंद्रमा को आधार बनाने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों के सहयोग से भविष्य में चंद्रमा पर मानव की स्थायी उपस्थिति भी संभव हो सकती है। भारतीय संस्कृति में अगर चंद्रमा का विशेष महत्व कहा जाए, तो भाई करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और रक्षाबंधन जैसे अनेक पर्व चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में चंद्रमा को प्रेम, शांति, सौंदर्य और आशा का प्रतीक भी माना गया है। इस प्रकार चंद्रमा केवल वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मानव की वैज्ञानिक प्रगति, साहस और जिज्ञासा का उत्सव है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि निरंतर प्रयास, ज्ञान और तकनीकी विकास के बल पर मानव असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। भारत की चंद्रयान श्रृंखला ने ये सिद्ध कर दिया है। किसी भी संसाधनों के बावजूद भी दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। हमें इस दिवस से प्रेरणा लेकर विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए। तथा अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से मानव के उज्जवल भविष्य का निर्माण में अपना योगदान देने का भी संकल्प लेना चाहिए।

0: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब समाचार होंगे। चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाए गए प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक ये विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है।
1: आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
0: इस अवसर पर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

0: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को कल प्रशासक बना दिया। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।
3: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव DM के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का कल लखनऊ में समापन हो गया।
4: शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खड़से ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। यह शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने तथा नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए कल सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र में गजरौला मार्ग पर कल शाम हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ओवरटेकिंग के दौरान बाइक सवारों और कैंटर के बीच टक्कर हो गई। हमारे अमरोहा प्रतिनिधि ने

0: बताया कि टक्कर के बाद कैंटर भी अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में पलट गया, जिसमें कैंटर सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में कल रात मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों तथा तराई क्षेत्रों एवं बुंदेलखंड में बारिश का ये क्रम 2 दिनों तक जारी रहेगा।
1: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
0: इस बीच जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा कल से रोक दी गई। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन अगले माह 28 अगस्त को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, मानव वन्य जीव द्वंद्व को आपदा की श्रेणी में रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 13 अगस्त तक प्रस्तावित सत्र के दौरान चर्चा और मंजूरी के लिए सूचीबद्ध हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों के लिए जारी किया 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

और मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। इसी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग है भटियार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह, और शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना पंडित राम नारायण का सारंगी वादन राग भटियार। और कल का श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा था नमस्कार लखनऊ। कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर होगी मुलाकात एक नई आवाज के साथ। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात होंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया

0: जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार।

0: लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आठ बज के 15 मिनट हो चुके हैं और हम लेकर आए हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। नमस्ते, नमस्कार, बरेली।

साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका साथी संजय। सुबह की इस सुनहरी बेला में आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, और यहाँ होगी शहर की ताजा हलचल, उपयोगी जानकारियां, प्रेरक बातें, संस्कृति और मधुर संगीत का सुंदर संगम। तो मुस्कुराइए, सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए नमस्ते बरेली, क्योंकि आपका हर सवेरा है हमारे साथ। साथियों मानसून केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि प्रकृति नवजीवन का उत्सव है। तपती धरती पर जब काले बादल उमड़ते हैं और पहली बारिश की बूंदें मिट्टी को स्पर्श करती हैं, तो वातावरण में एक अनोखी सौंधी महक और नई ऊर्जा भर जाती है। और ऐसे में फिर से सक्रिय हो चुका है मानसून। झमाझम वर्षा से 5.5 डिग्री पारा लुढ़क गया है। श्रोताओं जिले में मानसून की सक्रियता ने एक बार फिर मौसम को खुशगवार बना दिया है, जिससे लंबे समय से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। शनिवार देर रात से शुरू हुई वर्षा का दौर रविवार दोपहर तक रुक रुक कर चलता रहा। मानसूनी फुहारों और ठंडी हवा के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। आलम यह है कि सुबह के समय लोगों को घरों में पंखे, कूलर और एसी तक बंद करने पड़े। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अधिक वर्षा की संभावना जताई है। और हमें लगता क्या है, हमारे आकाशवाणी केंद्र के बाहर की ओर जहां खुला एरिया है वहां टिप टिप बारिश अभी भी हो रही है।

साथियों, डांस नृत्य केवल शरीर की गति नहीं बल्कि भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति भी है। ये एक ऐसी कला है जो शब्दों के बिना भी मन की बात कह देती है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में नृत्य का विशेष स्थान रहा है। हमारे शास्त्रीय और लोक नृत्य हमारी परंपराओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आए हैं, और ऐसे में हमने नृत्य गुरु बरेली के विजय कमांडो जी से फोन पर बातचीत की। उनके अनुभवों को आपके साथ आज कार्यक्रम नमस्ते बरेली में हम साझा कर रहे हैं।

0: आज के प्रोग्राम नमस्ते बरेली में हमारे साथ है बरेली के वो गुरु जिन्होंने डांस के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में बहुत से युवाओं को शिक्षा दी है और उस शिक्षा के आधार पर उन युवाओं ने अपना करियर बनाया है। हम बात कर रहे हैं विजय कमांडो जी की, जो बरेली के निवासी हैं और एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व है, साथ ही कलाकार भी है, उन्होंने थिएटर भी किया है और डांस के गुरु भी है। विजय कमांडो जी, कार्यक्रम नमस्ते बरेली में आपका स्वागत, अभिनंदन।
1: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, आप मेरे बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं।
0: विजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम नमस्ते बरेली में हम युवाओं को बहुत से क्षेत्रों में जाते हुए देखते हैं, अपना रोजगार बनाते हुए देखते हैं, अपना भविष्य बनाते हुए देखते हैं। क्योंकि आप डांस के बरेली के रहने वाले गुरु हैं जिन्होंने युवाओं को शिक्षा दी है, तो ऐसे में युवाओं के लिए डांस को एक सफल करियर बनाने में क्या सबसे बड़ा अवसर हो सकता है बरेली सिटी के अंदर?
1: देखिए, डांस के लिए सबसे पहले तो जो भी डांस के क्षेत्र में आना चाहता है या काम कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है आपकी आत्मा में कला का सृजन जरूरी है।
0: बहुत बहुत सही,
1: क्योंकि बिना कला के आप सृजन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: तो जब आपके अंदर कला ओतप्रोत होगी तब ना आप सृजन कर पाएंगे। तो डांस जो है युवाओं की आकांक्षाओं का एक सृजनात्मक उपाय है और व्यक्ति को बहुत ही अनुशासन से रहना चाहिए। कला का प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी कलाकार है या जो भी डांस से प्रेरणा ले रहा है, डांस कर रहा है, डांस करना चाहता है, तो उसको कलात्मक होना जरूरी है।
0: बहुत सही बात कही विजय जी आपने। अच्छा विजय जी, इसके साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जो युवा छोटे शहरों से आते हैं, जो यूथ जो छोटे शहरों में रहते हैं और उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, उन्हें डांस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए बरेली के आसपास के गांव में कहीं पर कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो बहुत बढ़िया टैलेंट हैं और उनको रास्ता मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही युवाओं के लिए डांस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसे युवाओं को सबसे पहले तो पात्र अनुकूल होना चाहिए जिसे वो मिलना चाह रहा है।
0: जी,
1: अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो किसी इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति से मिले जो इंडस्ट्री में अपनी पहुंच रखा हो, इंडस्ट्री से उसका संबंध हो और सही नाता हो, और ऐसे लोगों के पास जाए जिनको वो जानते हैं और जो इंडस्ट्री को जानता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे अगर सही लोगों से मिलेंगे तो शर्तिया वो आगे बढ़ेंगे और जिस धुन में वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें वो जरूर सफल होंगे।
0: भाई विजय जी, हम तो चूंकि आप डांस के गुरु हैं बरेली में, बहुत से युवाओं को आपने सिखाया है, तो हम डांस के क्षेत्र में ही आपसे बात करेंगे। एक सफल डांसर या कोरियोग्राफर बनने के लिए टैलेंट के साथ साथ किन गुणों और

0: अनुशासन की सबसे अधिक जरूरत होती है?
1: देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि शिक्षा और कला में बहुत अंतर होता है। शिक्षित होना और ज्ञानी होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ज्ञान प्रचुर मात्रा में होता है, शिक्षा सीमित होती है। शिक्षा के एक किताब होती है, एक डिग्री होती है, उसे आगे शिक्षा खत्म हो जाती है। ज्ञान अथा सागर है, लेकिन फिर भी ज्ञान के साथ शिक्षित होना अति आवश्यक। जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ ज्ञान के साथ शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है। देखिए, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको शिक्षा की भी जरूरत पड़ती है ज्ञान के साथ। दूसरी चीज, टैलेंट आपके पास है और आप सही मंच पर उसका उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलनी है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट बरेली में सिखाए हैं। एक लड़का यहाँ रहता था, मुकेश भारती, बरेली में रामपुरा नाले पर मेरा स्टूडेंट रहा है। आज वो मुंबई में है, उसकी 3 फिल्में आई हैं जिसमें वो अभिनेता है, हीरो है।
0: अच्छा,
1: मुकेश भारती
0: जी, जी।
1: एक लड़का है आमिर खान, पुराने शहर का है। अभी 24 अप्रैल को उसकी मूवी रिलीज हुई थी दबिश।
0: अच्छा,
1: उसमें वो हीरो है, वो भी यहाँ डांस सीखे गया है और आज इतनी बड़ी फिल्म में हीरो बना वो। दिशा पाटनी मेरी डांस की स्टूडेंट रही।
0: अच्छा,
1: और आज वो इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अभिनेत्री है। उनके पिताजी भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं डांस के।
0: अच्छा,
1: जगदीश पाटी जी।
0: अच्छा,
1: और उनके मामा है मनोज कांडपाल जी, जो इस समय डायरेक्टर हैं डिग्री कॉलेज।
0: हाँ जी जी।
1: तो देखिए, दिशा पाटनी जी ने भी बरेली से जाने के बाद कितनी तरक्की करी है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो सही जगह पर रहेगा और सही लोगों को चुनेगा तो सफलता निश्चित मिलेगी।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। एक ऐसा नाम बताया जिसे आज पूरा इंडिया जानता है और बरेली की दिशा पाटनी भी आपकी स्टूडेंट रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ आज विजय जी, सोशल मीडिया और रियलिटी शोज ने डांस के क्षेत्र में करियर बनाने के अवसरों को किस तरह बदला है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए साहब, जब जिस जमाने में हम डांस सीखा करते थे और डांस सिखाया करते थे तो समय उस समय ये था कि हम बम फोड़ते थे तो पटाखे की आवाज नहीं होती।
0: अच्छा।
1: और आज लोग पटाखा फोड़ते तो बम से ज्यादा आवाज कर रहा है।
0: क्या बात, क्या बात।
1: क्योंकि सोशल मीडिया उसका साथ देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे समय में तो अखबार भी ब्लैक एंड व्हाइट छपता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए, इस समय और पहले के समय में अंतर था। आज पेरेंट्स जागरूक हो गए। पहले पेरेंट्स नाचने गाने को अच्छा नहीं मानते। मैं अपना ही बताऊं, जब मैंने पहली बार अपनी माता श्री से कहा था, मम्मी जी मुझे डांस सीखने जाना है, तो चटा एक गाल पर रस्सी कर दिया था,
0: पड़ा था
1: वो, प्यार भरा था, चनकट प्यार भरा था। तो एक वो जमाना था जब हम कहते थे कि हमें डांस सीखने जाना है तो चनकट पड़ता था, डांस सीखेगा? अभी मैं डांस स्कूल चलाता हूँ, बच्चे कहते हैं मम्मी ने मारा कल, तू डांस सीखने क्यों नहीं गया?
0: अच्छा, ये अंतर आया है।
1: तो ये परिवर्तन आया है।
0: जी जी।
1: तो अब जो पेरेंट जागरूक हो गए हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो रियलिटी शो है, ये जो हमारा बच्चा डांस कर रहा है, एक दिन आगे बढ़ेगा और परिवार का भी नाम रोशन करेगा, शहर का भी नाम रोशन करेगा और देश का भी नाम रोशन करेगा, ये अच्छा कलाकार बनेगा।
0: विजय जी, आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत है वो हमारे युवाओं के लिए एक दिशा तय कर सकती है, हमारी आपकी बातचीत।
1: हाँ बिल्कुल। देखिए, युवा में बहुत ऊर्जा होती है और युवा जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अपनी ऊर्जा का वो सही इस्तेमाल।
0: बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते विजय जी, कुछ ऐसी बातें जो हम अभी आपसे डिस्कस नहीं कर पाए हैं और आप आज के बरेली के युवाओं को कहना चाहेंगे, तो ऐसे क्या आप सुझाव युवाओं को देना चाहेंगे, आप कह सकते हैं?
1: मैं अपने बरेली के बहुत सारे युवाओं को जानता हूँ। बरेली बहुत सुंदर शहर है, यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तालीम हासिल की है लोगों ने, और ये कुछ अजीब मिजाज का शहर है। यहाँ से तो जो लोग बाहर से आ जाते हैं वो भी यही घर बना के रहने लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: ये ऐसी प्रेम की नगरी है, सूफियानी नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, बहुत भाईचारे की नगरी है। यहाँ पर चुन्ना मियाँ का मंदिर भी है, यहाँ साधुनाथ भी है। तो यहाँ जो युवा है, अगर वो कला के क्षेत्र में उतरना चाहता है तो चाहे वो लाइन थिएटर की हो, चाहे वो डांस की हो, चाहे वो संगीत की हो, चाहे वो लेखन क्रिया की हो, युवा अपने अनुशासन को अनुशासित रखे, सही जगह पर अपनी शक्ति का सही जगह पर प्रदर्शन करें।
0: बिल्कुल।
1: और समय का नियोजन करें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक ही लाइन में ना जाए, वो कुछ भी काम करते रहे, लेकिन समय का नियोजन करके अपनी कला को भी जिंदा रखें और अपने काम पर भी ध्यान दें।
0: विजय जी, आज बड़ी महत्वपूर्ण वार्तालाप आपसे हुई है कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। हम ये कहना चाहेंगे कि आप भविष्य में भी बरेली के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक द्रोणाचार्य बनकर उनको डांस के क्षेत्र में शिक्षित करते रहें। हमारी ओर से, आकाशवाणी बरेली परिवार की ओर से, आपको और आपके विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नमस्ते बरेली में इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कला के क्षेत्र में आए, कला की सेवा करें और कला से अपने शहर, अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन करें।
0: जी विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

साथियों, क्या कभी हमने आपने सोचा है कि रेलवे स्टेशन केवल ट्रेनों के आने जाने का स्थान नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, सपनों और यात्राओं का संगम होता है। एक नया रेलवे स्टेशन किसी शहर या क्षेत्र के विकास, आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में साथियों, बरेली होकर गाजियाबाद सीतापुर के बीच 400 किलोमीटर की नई रेल लाइन को अप्रैल में मंजूरी मिलने के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड ने खाका खींचना शुरू कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 14,926 करोड़ का बजट तय किया है। साथ ही परियोजना के तहत बरेली में 40 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। न्यू बरेली नाम से एक नया स्टेशन भी बनाया जाएगा। बरेली से पीलीभीत मैलानी होते हुए एक लाइन लखनऊ और पूर्वांचल को कनेक्ट करती है। तो ऐसे में बरेली शाहजहांपुर के बीच रेल लाइन पर ट्रेनों का दबाव काफी ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल में गाजियाबाद सीतापुर के बीच 400 किलोमीटर से ज्यादा तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। नई लाइन बरेली के भिटौरा से रामगंगा और बुखारा होते हुए टिसुआ निकलेगी।

साथियों, सड़कें केवल मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारियों की भी परीक्षा होती है। एक छोटी सी लापरवाही किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। ऐसे में हम आज 20 जुलाई को बरेली शहर की अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो वो अच्छा रहेगा। साथियों, शहर के प्रमुख मार्गों जैसे सैटेलाइट चौकी चौराहा, आयुब खां चौराहा पर सामान्य दिनों की तरह आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। हालांकि यदि आप शहर के बाहरी या हाईवे मार्गों का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि बरेली में जो अलखनाथ मंदिर क्रॉसिंग है, वहां पर शहर में कुछ स्थानों पर रात के समय मरम्मत कार्य या स्थानीय व्यवस्था के चलते अस्थाई ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है। साथ ही कानपुर बदायूं और दिल्ली रूट पर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत आने वाले दिनों में हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने और मार्ग परिवर्तन की योजना लागू की गई है। यदि आप भारी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

तो श्रोताओं, आज के नमस्ते बरेली में बस इतना ही। उम्मीद है हमारा साथ आपके दिन की शुरुआत को और भी खुशनुमा बना गया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें जरूर भेजिएगा। और साथियों, संजय जी हां, आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़। नमस्ते बरेली, फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत हैं कुछ लोकगीत। आज के लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं दामोदर शर्मा और साथियों की आवाजों में। आइए सुनते हैं।

0: 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं दामोदर शर्मा के स्वर में लोकगीत, आइए सुनते हैं।
1: ब्रज मंडल को जाए ब्रज

0: साथियों, इस लोकगीत के साथ ही जिसे आवाज दी थी दामोदर शर्मा ने, हमारा आज का लोकगीतों का ये सफर यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला।
1: लीजिए सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला। लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू।
4: दीपमाला हॉस्पिटल, टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज,

0: और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
1: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
0: 9837000048।
2: सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला, ये है कार्यक्रम और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब एक समस्या है हमारे समाज में, लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है, कमर में दर्द रहता है और कई तरह के मिथक इससे जुड़े हुए हैं, तो वाकई में डॉक्टरी भाषा में एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बताएंगे, स्लिप डिस्क और कमर के दर्द का आपस में क्या रिश्ता होता है?
3: देखिए जनरली क्या होता है कि स्लिप डिस्क होती है, डिस्क है वो हमारी एक रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं उनके बीच में एक कुशन दिया होता है
2: जी,
3: जिसको बोलते हैं डिस्क।
2: अच्छा।
3: उसका काम होता है कि जब मरीज चले या उस पर कोई वजन उठाए तो उनके बीच में हड्डियों पे जोर ना पड़े, उसका काम है गद्दे वाला।
2: अच्छा।
3: कि दोनों के बीच में कंप्रेशन ना पड़े, जनरल भाषा में हम बात करें
2: जी जी।
3: होता क्या है कि एक एज के बाद 40-50 साल के बाद क्या होता है कि उसमें जो होता है पानी की मात्रा उस डिस्क में कम हो जाती है।
2: अच्छा।
3: डिस्क सूखने लगती है तो उसका जो कंप्रेशन का पावर है वो कम हो जाता है, जिससे वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, वो चीजें कम हो जाती है। धीरे धीरे फिर क्या होता है वो डिस्क जो है वो हड्डी के बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क बेसिक भाषा में, कि उसमें पानी की मात्रा कम हुई, डिस्क सूख गई। अब उसका काम था जो लोड के टाइम, जो शरीर पे वजन के टाइम उठाने के समय, मुड़ने के समय, चलने के समय
2: जी,
3: जो भार पड़ता था उसको प्रेशर नहीं आने देती थी हड्डियों पे, अब वो प्रेशर बढ़ गया।
2: अच्छा।
3: अब वो डिस्क निकलेगी और फिर क्या होता है जहां से डिस्क निकलती है पीछे होती है हमारी सारी रगें होती हैं जो नीचे पैरों में आ रही हैं, कमर में आ रही हैं, तब वो जो डिस्क निकलती है फिर वो क्या करती है उस रगों पे प्रेशर डालती है।
2: अच्छा, ये जो रीढ़ की हड्डी है, हम अगर समझने के लिए अपने श्रोताओं को बताना चाहें तो जिस तरह से शॉकर होता है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, शॉकर का जो काम है किसी भी झटके को या किसी भी दबाव को बर्दाश्त करना और ऊपर का जो सिस्टम है जो बैठी हुई सवारी है उनको रिलैक्स में रखना।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम उदाहरण है,
2: उसी तरह रीढ़ की हड्डी
3: का काम है ये, डिस्क का काम यही है कि शॉक एब्जॉर्बर शॉकर वाला काम करती है।
2: जी जी, आपने बताया डॉक्टर साहब कि पानी सूख जाता है और जो गद्दी है वो कमजोर हो जाती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है, तो ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आप डॉक्टर लोग L4 L5, ये क्या है और L से क्या मतलब होता है?
3: L4 L5 या L का मतलब होता है लंबर, ये बॉडी में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है
2: जी
3: वो कई रीजन में डिवाइड है, चार रीजन मेन हो गए हैं जिनका बोलते हैं सर्वाइकल, जिसको हम बोलते हैं जो सबसे गर्दन वाली है।
2: अच्छा।
3: फिर नीचे सर्वाइकल से शुरू होती है हमारी थोरेसिक या डोर्सल।
2: अच्छा।
3: जो होती है हमारे सीने से और जहाँ पे रिब्स होती है वहां तक होती है डोर्सल,
2: पसलियों तक,
3: पसलियों तक
2: जी जी।
3: उसके नीचे शुरू होती है लंबर।
2: अच्छा।
3: जो मेन हमारी बॉडी का वजन सब ऊपर से आके लंबर में आ जाता है, लंबर होता है इंग्लिश वर्ड है जो हम
2: जी जी,
3: तो उसी को बोलते हैं एल शॉर्ट फॉर्म में।
2: अच्छा।
3: वो होती है पांच, L1 से लेके L5 तक। और फिर उसके नीचे होती है सैक्रम, जो एक इकट्ठी जो कूल्हे की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई, और उसके लास्ट में होती है कॉसिक्स।
2: अच्छा।
3: तो ये पांच रीजन में हमारी पूरी वर्टिब्रा डिवाइड है, तो मेन रीजन है जो एल वाला है वो लंबर होता है।
2: रीढ़ की हड्डी को पांच तरह से समझने के लिए डिवाइड किया गया है, और जो आपने बताया L4 L5 वाली स्ट्रक्चर है वो नीचे की कूल्हे की हड्डी से ऊपर का एरिया होता है, उसमें मात्र पांच हड्डियां होती हैं। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो L4 L5 कहा जाता है वो कहाँ किस किस चीज में इन्वॉल्व होता है, क्या L4 L5 में ही दिक्कत होने की वजह से कमर में दर्द होता है?
3: हाँ, उसमें बेसिकली ये होता है कि अब कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द के कई रीजन हो जाते हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं
2: जी जी।
3: एक डिस्क होगा जो जनरली हमारे कॉमन हो जाती है 50-60 साल के बाद। उसके अलावा क्या होता है कभी कभी जो मांसपेशियां जिन कमर की हड्डी को जो रोक के रखती हैं, जिनको बोलते हैं लीगामेंट्स हैं, उनमें भी कभी लूजनेस आ जाती है, मतलब थोड़ा सा वो ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां भी आगे पीछे हो जाती हैं
2: जी।
3: स्पोंडलोडिस्काइटिस या स्पोंडलाइटिस बोलते हैं उनको हम
2: जी।
3: तो उसमें क्या होता है कि हड्डियों को आगे पीछे मूवमेंट के होने की वजह से भी दर्द होता है, तो कमर दर्द का डिस्क भी एक रीजन हो गया, स्लिप डिस्क बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: या फिर हड्डी में मूवमेंट हो गया उसकी वजह से भी हो जाता है
2: जी।
3: कभी कभी वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, पोस्चर जो मतलब हमारे बैठने का तरीका एक साइड हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। मांसपेशियों में कभी कभी एक तरफ से सिकुड़न आ जाती है, स्पाज्म जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है
2: जी।
3: तो ये कई रीजन हो जाते हैं कमर दर्द के बेसिकली
2: जी। डॉक्टर साहब कमर दर्द की वजह तो आपने बता दी, स्लिप डिस्क के भी विषय में बता दिया, ये तय कैसे करते हैं आप, कौन सी जांचें कराते हैं जिनसे ये तय हो पाता है कि ये स्लिप डिस्क है, L4, L5 में दिक्कत है या

0: और बचा है।
1: हाँ, अब मैं इस पे बताता हूँ, जैसे L4 L5 एक कॉमन हो गया, मोस्ट कॉमनली जनरली L4 L5 या L5 S1 में डिस्क हो जाती है सबसे ज्यादा, डिस्क का
0: सबसे
1: वही
0: सुनने में आता है।
1: हाँ, सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा यही होता है कि जनरली L4 L5 या L5 S1 जो लेवल के, लेकिन डिस्क उसके ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्क वही होती है, बट ये कॉमन सबसे ज्यादा इन्हीं लेवल पे सिर्फ डिस्क होती है।
0: अच्छा,
1: इस वजह से होता है। बट कमर दर्द L3 L4 से भी हो सकता है, L2 L3 पे भी हो सकता है, L1 L2 पे भी हो सकता है।
0: अच्छा अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है,
1: ये कहीं भी हो सकता है। ऊपर से जो हम सर्वाइकल बोलते हैं,
0: हाँ,
1: तो वहाँ भी स्लिप डिस्क ही होती है, बट वो सर्वाइकल गर्दन वाले रीजन वाले
0: होती है,
1: तो वहाँ भी कंप्रेशन होता है, तो वहाँ हाथ पैरों में, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है।
0: जी जी,
1: ये नीचे आ गया क्योंकि नीचे का सिस्टम है, तो यहाँ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में,
0: सर्वाइकल में।
1: सर्वाइकल में चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ से ऊपर के हाथों के अलावा भी कई जो हमारे बैलेंस बनाने की भी चीजें होती है, उसकी वजह से भी आता है। बहुत से नर्व वहाँ पे और ज्यादा नसें होती हैं
0: जी,
1: तो उस लेवल के हिसाब से वो सिम्टम में लक्षण आ जाते हैं।
0: डॉक्टर विकास गुप्ता, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कैसे ये तय कर पाते हैं आखिर समस्या कहाँ है, कौन सी जांचें हैं जो आपको मदद करती हैं ये तय कर पाने में कि बीमारी क्या है और कहाँ से संबंधित है?
1: उसका भी देखो कई चीज, पहले तो हम करते हैं एक एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, अपनी जांच करते हैं मरीज से बात करके, मरीज के सिम्टम से कि दर्द कहाँ पे है, उसको कहाँ तक जा रहा है, कमजोरी हाथ पैरों में कहाँ तक है, तो उससे हमें एक लेवल का आइडिया लग जाता है कि L2 पे L3 पे L4 पे हम उससे लगाते हैं। एक जो हमारी जांच होती है, फिर मरीज को चल के देखते हैं, मरीज के सारा एग्जामिन करते हैं, उससे हमें लगता है। फिर दूसरी जो हम एक इन्वेस्टिगेशन जो हर जगह हर कोई करा लेता है, MRI कराते हैं।
0: अच्छा,
1: MRI से हमें एक डिस्क किस लेवल पे निकली हुई है उसमें कन्फर्म हो जाती है।
0: अच्छा,
1: जो हम टेस्ट करते हैं उसमें कन्फर्म इतना नहीं होता, जो हम अपना जाँच करते हैं मरीज की उसमें कभी कभी डाउट रहता है किस लेवल पे है, लेकिन MRI से हमें कन्फर्म हो जाती है कि किस लेवल पे डिस्क निकली हुई है।
0: अच्छा, MRI एक ऐसी जाँच है जिससे आप ये निश्चित कर लेते हैं कि समस्या कहाँ है,
1: कहाँ है।
0: अब इलाज के विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: अब इलाज उसमें ये हो जाता है, अब डिस्क में भी कई जगह होती है, एक हम जो बोलते हैं सीधा डिस्क है सेंट्रल होता है
0: जी।
1: एक होती है कि थोड़ा सा सेंट्रल में ना होके थोड़ा सा बाहर की साइड में डिस्क निकली हुई है, या एक होती बहुत बाहर निकली हुई है डिस्क, एक वो एक पूरा रीजन होता है, उसमें हम जैसे सेंट्रल, पैरासेंट्रल, लेटरल, कई कंडीशन में डिस्क सिर्फ डिस्क होती है
0: जी।
1: उसी हिसाब से उसमें लक्षण चेंज हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अब बहुत ज़्यादा सिर्फ डिस्क है और उसके बाद से जो जो जिसमें रगें निकल रही हैं वो कैनाल बोलते हैं हम, लंबर कैनाल जिसको बोलते हैं, लेकिन वो ये ना कि जिससे रगें पास हो रही हैं, एक रास्ता है वहाँ पर।
0: अच्छा,
1: अब कितना दबाव उस डिस्क ने डाला है उस बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट असेसमेंट लगाते हैं कि मतलब करते हैं कि क्या करना होगा इसमें
0: जी जी।
1: तो अब ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन है और जो रगों को बहुत ज़्यादा दबाव हो गया, तो फिर उसमें इलाज बचता है सर्जरी।
0: अच्छा,
1: जिसको हम कहते हैं डिस्केक्टमी या डिस्क को हम निकालते हैं
0: जी। क्या दवाइयों से भी ये ठीक होती है समस्या?
1: दवाइयों से ठीक हो सकती है अगर उसमें हमें करना होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं है, जो रगें हमारी उस रास्ते से पास हो रही हैं उनके लिए पूरा स्पेस है, रगों में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं है, थोड़ा है, तो उसमें हम कुछ एक्सरसाइज होती हैं मरीजों को, कुछ दवाइयाँ लिखते हैं
0: जी,
1: थोड़ा रेस्ट बोलते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो उसमें फर्क आ जाता है।
0: कई बार डॉक्टर साहब कमर में बेल्ट बनवा देते हैं आप लोग मरीज की?
1: हाँ, वो बेल्ट इसीलिए बनवाते हैं कि बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, मरीज झुके ना
0: जी,
1: क्योंकि जितना झुकेगा, ज्यादा वजन उठाएगा, तो वो डिस्क और स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना लोड आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करें
0: जी,
1: तो उससे फर्क आता है। तो कभी कहीं कई मरीजों में 60-70% में ऑलमोस्ट की फर्क आ जाता है, अगर पूरा डिस्क में मतलब जो रगों की जो जगह है पूरी अगर दबी नहीं है
0: जी। सर्जरी की बात आपने की डॉक्टर साहब,
1: ऑपरेशन,
0: चूंकि ऑपरेशन या सर्जरी ऐसा नाम है जिसको सुन के ही घबराहट होने लगती है लोगों को, और वो भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, कमर की सर्जरी, पता नहीं क्या भविष्य रहेगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। आज तो सर्जरी में बहुत कुछ नया आ चुका है, किस तरह सर्जरी करते हैं आप?
1: देखिए सर्जरी तो अब जैसे, हाँ जैसे बोल लो एडवांसमेंट आ गया, तो रोबोटिक्स आ गया और बहुत से ज़्यादा नेविगेशन गाइडेड आ गए, तो चीज़ें में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, लेकिन एक बेसिक बात करी जाए तो डिस्क है, डिस्क को हमें निकालना है। अब उनके तरीके बदल गए, पहले हम खोल के चीरा लगा के करते थे, थोड़ा सा चीरा बड़ा लगता था, वो बेसिक था, ट्यूबलर डालते थे, एक ट्यूब एक आती थी छोटी सी ट्यूब डाल के निकालते थे
0: जी।
1: उसके बाद आ गया इंडोस्कोप आया।
0: अच्छा,
1: फिर हम इंडोस्कोप से डालते थे और छोटा चीरा हो गया निकाल लेते थे
0: जी।
1: अब आ गया रोबोट्स, आप मरीज के पास डॉक्टर सर्जन जाता ही नहीं, बाहर रोबोट्स पे काम करता है, रोबोट्स में आर्म्स होती हैं जैसे हमारे हाथ हैं, उसमें 4-5 हाथ हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिए जाते हैं, दूर बैठ के पैनल पे सर्जन ऑपरेट करता है
0: जी।
1: तो ये सब चीज़ें एडवांसमेंट हुई हैं
0: जी,
1: लेकिन बेसिक चीज़ जो है कि वो डिपेंड करता है डिस्क किस लेवल पे है और कहाँ पे है
0: जी जी।
1: अगर बहुत ज़्यादा डिस्क बाहर निकली हुई है तो इंडोस्कोप से हो जाती है, जिसको बोलते हैं।

0: एक्सट्रूडेड डिस्क हमारी भाषा में, जिसके डिस्क पूरा ही निकल के बाहर आ गई, साइड में आ गई, एंडोस्कोप डाल के आप निकाल लोगे।
1: यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन जो कहा जाता है उसके बारे में आप बता रहे हैं।
0: जी दूरबीन जो एंडोस्कोप जो बोले, हाँ बेसिकली वो दूरबीन, दूरबीन की, बट उसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क आता है। ओपन सर्जरी में होता है कि अगर जो कैनाल जिसमें रगों की जगह है उसमें कई चीज़ें होती, कभी डिस्क की वजह से होती है, और क्या होता है कि जब डिस्क बहुत लंबे समय से होती है वहाँ पे दर्द हो रहा होता है, जो हड्डियाँ आगे पीछे चल रही हैं उसकी वजह से आसपास की मांसपेशियाँ या जिनको लिगामेंट हम बोलते हैं वो भी मोटी हो जाती हैं, थिकनेस हो जाती है उसको मतलब रोकने के लिए कि मूवमेंट ना हो
1: जी।
0: उन कंडीशन में क्या होता है कि इंडोस्कोप से हम उनको नहीं निकाल पाते हैं।
1: अच्छा,
0: उसमें हम सिर्फ डिस्क निकाल सकते हैं, जिसमें हम कभी लिगामेंट होते हैं वहाँ पे फ्लैब हम बोलते हैं जिसको, वो भी हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: अच्छा,
0: उन कंडीशन में हम ओपन सर्जरी ज़्यादा है प्रेफर करते हैं, वो एंडोस्कोपिक ज़्यादा, लेकिन एंडोस्कोपिक से लिमिटेड होता है, उसमें हमें विजन भी कम होता है। एंडोस्कोपिक के कई ड्रॉबैक भी हैं, कई एडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेजेस में हो जाते हैं कि छोटे चीरे से सिंपल सा डिस्क निकाल दिया, ड्रॉबैक ये हो जाता है छोटा सा, ड्रॉबैक मतलब कि उसके
1: कि
0: नकारात्मक पहलू हो जाते हैं कि उसमें छोटा सा एंडोस्कोप है तो उतनी जगह हमें दिखेगी।
1: जी जी,
0: तो हमें बहुत सी चीज़ें आसपास की नहीं दिखती हैं, तो हम उसमें फोकस डिस्क ही निकाल पाते हैं
1: जी।
0: तो ये फ़र्क होता है, बाकी इलाज के वही तरीके हैं, ओपन जो पुराना हमारा सिस्टम पुराना है उसमें ओपन में ही करते हैं
1: जी। आपने बताया 70% लोग बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या या फिर कमर में दर्द जैसी समस्या है, मात्र 30% लोगों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और उसमें भी आपने कहा दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो दूरबीन के द्वारा और एक खुला ऑपरेशन। सर दोनों परिस्थितियों में कितने समय तक के लिए मरीज को अस्पताल में रहने की ज़रूरत पड़ती है?
0: दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दूरबीन वाले में आप अगले दिन भी जा सकते हो, और सर्जरी वाले जो हम ओपन भी करते हैं उसमें भी कोई नहीं, हम एक दिन या दूसरे दिन उसमें भी मरीज घर जा सकता है।
1: अच्छा,
0: उसमें कुछ भी दूसरे दिन से, डिस्क एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बहुत कुछ घबराने वाला नहीं होता, सिंपल सा होता है, जो रग है रग को हम साइड में करते हैं, अंदर से जो डिस्क निकली होती है उसमें छोटा सा चीरा देके, और जो भी बाहर निकला होता है उतना डिस्क निकाल के निकाल दिया जाता है, जिससे कंप्रेशन खत्म हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो इसमें बहुत बड़ा कुछ घबराने का नहीं, लोगों में रहता है कि डिस्क ही होगी हम चल नहीं पाएंगे
1: जी,
0: तो वो चीज़ें नहीं है, दूसरे दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो वो सब कुछ भी घबराने वाला नहीं होता है
1: जी, यानी बहुत रिस्की नहीं है ये कह सकते।
0: और सर्जरी के छोटे मोटे रिस्क होते हैं, वो कभी 0.1% किसी 2% में वो होते हैं जनरली, वरना कोई ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है
1: जी। जी, अच्छा ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी क्या किसी इलाज की किसी तरह की दवाइयों की जरूरत रह जाती है?
0: जी, कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक कुछ हम एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं जिससे कि जब तक घाव सूख जाता है।
1: अच्छा,
0: घाव सूखने के बाद फिर टांके कट जाते हैं 10-12 दिन में, उसके बाद फिर कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं रहती है।
1: बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, चूँकि स्लिप डिस्क या कमर का दर्द एक ऐसी समस्या है जो आदमी को बेचैन करी रहती है, ना रात को नींद आती है ना सुकून मिलता है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चलते चलते क्या खास संदेश है आपका उन लोगों के लिए जो डिस्क स्लिप की समस्या से या फिर कमर के दर्द से परेशान है, तड़प रहे हैं?
0: देखिए, उस मैं सबसे पहली चीज़ यही बोलूँगा कि थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को। ज़्यादातर डिस्क में क्या होता है कि जो लोग वर्कआउट करने जिम में जा रहे होते हैं, आज की ये यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा लोड उठाते हैं बिना किसी ट्रेनर के उठाते हैं, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कंप्रेशन मतलब प्रेशर आता है हमारी उसके ऊपर, बहुत दबाव आता है रीढ़ की हड्डी पे, उसकी वजह से भी वो स्लिप डिस्क होगी। दूसरा चीज़ है वजन बढ़ जाना, उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होगी, जिनको हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कि थोड़ा वजन कम किया जाए, थोड़ा एक्टिव रहा जाए, तो इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी। आपकी लापरवाही समस्याओं की वजह होती है और आपकी जागरूकता आपको समस्याओं से बचाती है। डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि न्यूरोसर्जन है, उन्होंने आपको बता दिया है श्रोताओं किस तरह स्लिप डिस्क और कमर दर्द से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो जागरूक रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 9:15 हो गए हैं और अब हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनीति चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के हैं बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों, आज विश्व शतरंज दिवस है, यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है।

इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरील धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म का ये गाना।

0: इस गाने के साथ ही आज का चितलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सौ दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
2: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
3: जहाँ सुकून मिले वहाँ सिर झुका दिया करें, चाहे वो ईश्वर का दर हो या अपना घर, गांव की छांव हो या माँ का पाँव।
2: श्रोताओं जाने तो जहाने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं।
1: जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज विषय है आयु का बढ़ना और मोतियाबिंद।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के बारे में लोगों के दिलों में कई सवाल उठते हैं। जैसे सुना कि मोतियाबिंद है, तो आखिर मोतियाबिंद है क्या?
2: मोतियाबिंद के बारे में सबसे जरूरी चीज एक जो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद जो है वो बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है वो आंखों के उम्र का बदलाव है। आंख जैसे शरीर बढ़ रहा है, उम्र के साथ में शरीर में बदलाव आ रहे हैं उम्र के साथ में, वैसे ही मोतियाबिंद भी एक आंखों का बदलाव है और बीमारी नहीं है। जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारी आंख में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बदलाव जो शुरू होता है वो 35 से 40 की साल की उम्र में शुरू होता है और उसको हम कहते हैं पास का नजर का चश्मा आना। ये पास का नजर का चश्मा जो है, इसको हम जो आता है, इस चेंज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारे जो आंख जो है पास का कोई भी काम पढ़ने में, उसको फोकस करने में उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। ये क्षमता खत्म इसलिए होती है क्योंकि आंख का जो लेंस है वो थोड़ा सा टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से जो रेज हैं जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो पर्दे पे फोकस ना होके पर्दे के पीछे फोकस होती है और इससे हमें पास का देखने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहला जो आंख में 35 से 40 साल की उम्र में बदलाव आता है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में आपको पास का देखने में दिक्कत होना खासतौर से शुरुआती दौर में, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब लाइट कम हो जाती है, आसपास के चारों तरफ की लाइट कम होती है तो देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि वही चीज जब आप धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा सही लगता है आपको। पास का पड़ेंगे अगर बहुत लंबे समय तक तो आंखों पे जोर पड़ना, आंखों में थकान, सर में दर्द, ये सारी दिक्कतें, और फिर क्या कहते हैं ये दिक्कतें आने लगती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 20 डायोप्टर के आसपास उसकी आंख में क्षमता होती है, वो दूर और पास का आंख जो है अकोमोडेट कर ले उसके हिस्से, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्षमता खत्म होती जाती है और 60 साल की उम्र पे लगभग बिल्कुल क्षमता खत्म हो जाती है पास का फोकस करने के लिए।
0: जैसा कि आपने बताया कि देखने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन आयु के साथ भी तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कैसे जाने कि जो हमारे साथ बदलाव हो रहे हैं उम्र के साथ या मोतियाबिंद के कारण हो रहे हैं?
2: मोतियाबिंद भी और उम्र के बदलाव भी दोनों ही एक उम्र के बदलाव की श्रेणी में ही आता है। 35 से 40 के साल की उम्र में जब आपको पास का देखने में दिक्कत होने लगे, आंख में भारीपन लगने लगे, या आपको ये महसूस हो कि मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और बाहर धूप में पढ़ रहा हूँ तो मुझे, तो फिर आपको इसीलिए 40 साल की उम्र पे एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 40 साल पे आपको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंख का इवैल्यूएशन कराना ही है। क्योंकि जो बहुत सारे बदलाव हैं, जैसे चश्मे का नंबर है, मोतियाबिंद है, काला पानी है, समलवाई जिसको हम कहते हैं, सारे बदलाव शुरू होने लगते हैं, जिसके लिए हमें एक बारी नॉर्मल रूटीन में 40 साल की उम्र में जाके दिखाना जरूरी रहता है।
0: जी, यानी साल में एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर अपनी आंखें दिखानी चाहिए, चेक करानी चाहिए।
2: बिल्कुल। अब इसी तरीके से जब हम आंखों में उम्र के हिसाब से बदलाव की बात कर रहे हैं तो दूसरा जो बदलाव अब शुरू होता है, शुरू में तो 35 से 40 साल की उम्र में शुरू हुआ प्रेस बायोपिया, पास का चश्मे का नंबर आना। 45 से 50 साल की उम्र में शुरू होता है मोतियाबिंद का डेवलप होना। मोतियाबिंद जो है लेंस होता है, ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि रोशनी सारी की सारी पर्दे तक पहुंच पाए, लेकिन इसके जो बनावट में फाइबर होते हैं, ये फाइबर्स धीरे धीरे से कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, ये जो है कंडेंस होने लगते हैं जिसको कहते हैं वो, और सफेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से हमारे को धुंधलापन आना शुरू होता है। अब ये धुंधलापन मोतियाबिंद की वजह से है या ये धुंधलापन उम्र का बदलाव की वजह से है, इसके लिए एक बार ही आपको अस्पताल आके अपना इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किस कारण की वजह से है।
0: तो डॉक्टर साहब, किस तरह की जांचें होती हैं? क्या कोई ऐसी मशीन होती है या आप विशेषज्ञ लोग अपने आप ऐसे देख करके बता देते हैं?
2: जी, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं। एक हमारे पास मशीन होती है, उसको उससे हम देखते हैं और उससे देख पाते हैं कि जो आंख में लेंस है वो लेंस में कितनी सफेदी आई है, कितनी सफेदी नहीं आई है, और इस एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि जो रोशनी में कमी है वो मोतियाबिंद की वजह से है या ये रोशनी में कमी सिर्फ पास के चश्मे की वजह से है।
0: डॉक्टर साहब, पता चल गया कि मोतियाबिंद है, तो फिर आपकी क्या सलाह होती है मरीजों के लिए?
2: वो फिर से मैं कहूंगी कि उम्र का बदलाव है, मोतियाबिंद होना ही है, सबको ही होना है। तो जब मोतियाबिंद का पता चल जाता है कि मोतियाबिंद है, कितना है मोतियाबिंद इस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या आगे करना है। अगर मोतियाबिंद शुरुआती दौर पे है, शुरुआती दौर पे मोतियाबिंद जो है आपका चश्मे से उसमें आपको

0: बेहतरी हो जाती है निगाह में और आपको बेहतर दिखने लगता है, तो कुछ समय के लिए आप चश्मा भी लगा सकते हैं, तब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमने कह दिया आपको कि मोतियाबिंद आपकी आंख में है, अभी जरूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हर तीसरे महीने आके आपको दोबारा से चेक कराने की जरूरत है कि मोतियाबिंद बढ़ तो नहीं रहा है। अगर मोतियाबिंद बढ़ रहा है या आप जो चश्मा लगा रहे हैं उस चश्मे से आपको फिर से धुंधलापन आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोतियाबिंद अब बढ़ रहा है। वो तथ्य खत्म हो चुका है कि पहले कहा जाता था कि मोतियाबिंद पकाकर ही ऑपरेशन किया जाए। उस जमाने में मोतियाबिंद पकाया जाता था जिस जमाने में चीरा लगता था, जिस जमाने में टाका लगता था। इसलिए फेको विधि द्वारा, दूरबीन द्वारा जब हम छोटे से छेद से ऑपरेशन करा रहे हैं, तो कच्चा मोती पे ही वो ज्यादा सक्सेसफुल है और तभी हमें करा लेना चाहिए। हमें पकने का उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
1: लेंस की बात आती है, जब आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद लेंस डालते हैं, तो कैसे चुनाव करते हैं आपकी इस आंख में ये लेंस सूट करेगा या ये लेंस लगेगा, कैसे आप विशेषज्ञ लोग चुनाव करते हैं?
0: हाँ, मोतियाबिंद में बहुत तरीके के लेंसेज होते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे हम उसको विभाजित करें तो होते हैं एक मोनोफोकल लेंसेज और मल्टीफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंसेज में ये होता है कि हम दूर का देख पाते हैं, दूर का ही सिर्फ हम देख पाते हैं, पास के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। जब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते थे तो कंपलसरी होता ही था कि हमें चश्मा आए, लेकिन अब जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं रह गया है कि हमने मोतिया को निकाला और हमने लेंस को डाल दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं और उसमें ये है कि हम ऑपरेशन को इस तरीके से करने की कोशिश करी जाती है कि ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए या फिर ना मात्र आए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये मोनोफोकल लेंसेज के साथ साथ अब मल्टीफोकल लेंसेज भी डेवलप हो गए हैं, जिसमें दूर के साथ साथ पास के लिए भी चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होती है। आजकल लेटेस्ट साल भर पहले ही एक लेंस लॉन्च हुआ है, विश्व में लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। वो लेंस जो है दूर के साथ साथ बीच की दूरी और पास की दूरी, मतलब एक तरीके से वो आपको आंख को वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम नॉर्मल आंख से देखते हैं जब हमारी आंख में मोतियाबिंद नहीं हुआ करता। इस लेंस को ट्राईफोकल लेंस कहते हैं, जो कि हर दूरी पे आपको देखने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये ट्राईफोकल लेंस जो अमेरिका में अवेलेबल हैं, जो पूरे इंडिया के बाहर भी, पूरे विश्व स्तरीय जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज भी हमारे पास में अवेलेबल है, ताकि आपको हर तरीके से देखने की, जिस तरीके से आपका दिनचर्या है, जिस तरीके से आपका काम है, उस तरीके से आप अपना लेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ दूर के लिए ही जरूरत है या दूर के साथ साथ पास की भी जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब, हम लेंस की बात करते हैं, लेंस लगाया जाता है क्योंकि हमने सुना है कि लेंस एक बार ही पड़ता है, तो क्या आप सलाह देते हैं कि ये लेंस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए?
0: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये सब लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है जो कि आपने समझा है ये बात कि लेंस को बार बार नहीं डाला जा सकता है। तो इसलिए जो भी हम चुनाव करें वो सबसे बेहतर और बेस्ट अपनी आंख के हिसाब से चुनाव करें। अब ये जब हम आंखों की जांचें करते हैं तो आंखों की जांचों के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी आंख की बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से हमें जो है क्या कहते हैं, अगर एस्टिगमेटिज्म है या हमारा सिलेंडर का नंबर हमारी आंख में है, तो हमारे को मोनोफोकल लेंस डलना है या हमारे को टॉरिक लेंस डलना है। कई तरीके के लेंसेज होते हैं जिससे हमें एग्जामिनेशन के दौरान या जांचों के दौरान हमें इस बात का पता चलता है कि हमारी आंख के लिए सबसे बेस्ट लेंस कौन सा है। अब जैसे किसी को शुगर है या किसी को बहुत कम उम्र में कई बार चोट की वजह से या किसी और वजह से 20 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, 40 साल की उम्र पे ऑपरेशन हो रहा है, या किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है, पर्दे खराब है शुगर की वजह से, तो जब पर्दे सेंसिटिव होते हैं तो एक पीले रंग का लेंस अलग आता है। वो पीले रंग का लेंस अगर हमारे आंख में लगाते हैं तो उससे हमारे अल्ट्रावायलेट रेज पर्दे पे नहीं पहुंचती हैं और वो हमारा पर्दा लंबे समय के लिए प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो सेंसिटिव पर्दे हैं, जिनकी आंखों में पर्दे में काला पानी है, समलवाई है, जिनके पर्दे में मैकुलर डिजनरेशन है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये सब लोग जो है पीले तरीके का जो लेंस होता है वो डलवा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है, लेंसेज जो है वो बहुत तरीके से है, रोशनी हर लेंस में आती है, ऐसा नहीं है कि रोशनी जो है वो लेंस में नहीं आती है, लेकिन हर लेंस की क्वालिटी अलग अलग है। हम जो है दूर का देख पाएंगे हर लेंस में, लेकिन जो बेहतर लेंस है जिनमें फिल्टर लगा हुआ है उनमें क्वालिटी ऑफ विजन, मतलब देख तो हम पाएंगे दूर का, उसमें भी जो कम अच्छे क्वालिटी के लेंसेज है उसमें भी हम दूर का देख पाएंगे, लेकिन जो बेहतर लेंसेज हैं उनमें रंगों में क्या अंतर है। लाल रंग आपको लाल रंग ही दिखेगा, फीका लाल नहीं दिखेगा। जो अपने क्या कहते हैं कम गुणवत्ता वाले जो लेंसेज हैं, आसमान नीला नीला सा दिखाई देता है, लेंस के बाद जो है फिर वो झिल्ली बनने

0: होती है वो झिल्ली की सफाई के लिए, फिर आपको अस्पताल में दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं बढ़िया लाल बढ़िया पीला, वो आपको बढ़िया नहीं फीका फीका सा मालूम पड़ता है। जिस तरीके से बनावट है, जिस तरीके से किसी चीज की बनावट है, वो उस तरीके से ना मालूम पड़ के थोड़ी सी भिन्न मालूम पड़ती है। तो जो क्वालिटी है विजन की, उसमें अंतर बहुत रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोटा मोटा सबको दिखाई देगा हर तरीके के लेंसेज। जो अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले लेंसेज हैं, उसमें आपको रंगों में पहचान है, कंट्रास्ट में पहचान है, रात में जो है किसी भी बल्ब है, बल्ब के चारों तरफ जो रोशनी है वो रोशनी फटी फटी सी नहीं मालूम पड़ेगी अच्छे गुणवत्ता वाले लेंसेज में। तो ये डिफरेंस होता है। और जो और अच्छे वाले लेंसेज हैं, उसमें दूर के साथ साथ आपको पास के लिए भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका पास का काम कुछ लोगों का ज्यादा रहता है, जिनका सिलाई बुनाई का काम ज्यादा है, जिनका लिखा पढ़ी का है, जो पोएट है या जो लेखक लोग हैं, पास के काम की ज्यादा जरूरत है, उनको ये एडवाइस ज्यादा रहता है कि आप जो है मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस डलवाएं, ताकि आपके पास के लिए आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। जो लोग हैं किसान लोग हैं, जिनको दूर का ही खेतों में ही काम है, दूर का देखने का काम है, वो मोनोफोकल लेंस लाएं। और फिर बाद में कौन सा लेंस डलना है, कौन सा लेंस नहीं डलना है, ये हम आंखों की कुछ जांचे करते हैं और जांचों में दौरान पता चलता है कि आंख की बनावट किस तरीके से है, और उस बनावट के हिसाब से ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी आंख के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। अब जो जांच करते हैं, ये जांच जो है आजकल एक इसके लिए भी लेटेस्ट टेक्निक आई है, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप मोतियाबिंद को निकालें और लेंस को डाल दें। अब हम लेंस इस तरीके से डालते हैं या ऑपरेशन को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आंख में लेंस पड़ने के बाद चश्मे का नंबर ना आए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमको ऑपरेशन इस तरीके से उसको क्या कहते हैं डिजाइन करने का, या इस तरीके से हम ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर ना आए। और ये सुविधा अपने पास में फोकस नेत्रालय में अवेलेबल है। कुछ लोगों की आंख की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आमतौर तौर पे 95% से 97% तक क्या कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो अच्छा लेंस लगा दिया, उसमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे लगता है कि हम बचपन में या किशोरावस्था में हों और चश्मे की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर बजट की बात भी आती होगी, क्या कुछ
0: देखिए लेंस जो है हर तरीके का लेंस फोकस में अवेलेबल है। फिर से मैं ये कहूंगी कि पॉकेट फ्रेंडली ना देखते हुए, है ना, हमें उस लेंस पे जाना चाहिए जो हमारी आंख के लिए बेस्ट है। फिर एग है, अगर हम नॉनवेज की बात करें, फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सब चीजें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। आजकल आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, वो आपको क्या कहते हैं आंखों के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसकी आंखों की ताकत की गोलियां होती हैं। इन आंखों की ताकत की गोलियों का आप साल में एक बार ही कोर्स कर सकते हैं, मतलब साल में एक रोजाना एक गोली नाश्ते के साथ खाकर क्या कहते हैं एक साल में एक बार ही एक कोर्स कर लिया, तो उससे आंखों में ताकत बनी रहती है। आंखों में ताकत बनी रहती है तो ये बदलाव जो है ये खत्म नहीं होते हैं, लेकिन डिले हो जाते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी में मात्र 10 मिनट लगते हैं ऑपरेशन में, और ऑपरेशन के 15-20 मिनट या आधे घंटे में ही आप अपने घर वापस जा सकते हैं खुद पैदल चलकर। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए वैसे ही आप तीसरे दिन से अपने ऑफिस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बचाव रहता है वो धूल मिट्टी धुआं पानी से रहता है, ये आपकी आंख में ना जाए अगर इस चीज का आप परहेज करते हैं, तो तीसरे दिन से आप 90% अपने सारे रूटीन के काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये सवाल गलत है, आधा अधूरा है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन पकने पर ही करवाना चाहिए?
2: ये बिल्कुल गलत है, मोतियाबिंद को बिल्कुल भी पकने नहीं देना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम तब करते हैं जब मोतियाबिंद कच्चा होता है, क्योंकि पुराने जमाने में जब चीरा लगता था और टाके लगते थे, टाके गर्मियों में पक जाते थे, इसलिए गर्मियों में ऑपरेशन करने को मना किया जाता था। लेकिन अब दूरबीन विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, इसमें ना इंजेक्शन लगता है, ना चीरा लगता है, ना टाके लगते हैं, इसलिए दूरबीन विधि से मोतियाबिंद करना कच्चे मोतिये पे ही ज्यादा बेहतर होता है। मोतियाबिंद को बिल्कुल भी पकने नहीं देना चाहिए। जितना पकेगा मोतियाबिंद उतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा दूरबीन विधि से, और जितनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उतनी आपको नुकसान होगा, इसलिए मोतियाबिंद को पकने नहीं देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी चेकअप कराना जरूरी है।
2: एक सक्सेसफुल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कभी भी आंखों के चेकअप

0: ज़रूरत नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है और हर मरीज़ को आँख के रेगुलर चेकअप की ज़रूरत हर साल या 2 साल में होती है। वो सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए ही नहीं बल्कि पर्दे या काले पानी की जांच के लिए भी होती है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर के लेवल से ज़्यादा नहीं प्रभावित होती है। शुगर का लेवल भले ही कंट्रोल हो लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है। इसलिए भले ही आपको शुगर है जो कि कंट्रोल्ड है तो भी हर डायबिटीज़ के मरीज़ को साल में एक बार आँख का या रेटिना का चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, क्या काला पानी मोतियाबिंद सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है?
0: ये सवाल बिल्कुल एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। ग्लोकोमा और मोतियाबिंद दोनों ही किसी भी

0: की भ्रांति है। ग्लॉकोमा और मोतियाबिंद दोनों ही किसी भी उम्र में हो सकते हैं, यानी बचपन में भी हो सकते हैं, पैदाइशी भी हो सकते हैं, बचपन में भी हो सकते हैं या फिर बड़े होने पे भी हो सकते हैं। कॉर्निया की जो ब्लाइंडनेस है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार आपकी पुतली पर चोट लग जाए या पुतली किसी कारण की वजह से सफेद हो जाए तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। ये बात एक मिथ है, या इसमें मतलब कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद आंखों की रोशनी वापस आ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी आंख के आगे बुनके से दौड़ते हैं, लाल लाल से दौड़ते हैं, वो क्या होते हैं?
0: आंख के सामने कभी कभी भुनके दौड़ते हैं और एकदम से बहुत सारे भुनके आ जाते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं और बहुत दौड़ते हैं इधर से उधर। इससे दर्द नहीं होता है, पर क्या ये नज़रअंदाज किए जा सकते हैं? ये एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। कभी भी आंख के आगे भुनके आपके तैर रहे हों जो कि बहुत सारे एकदम से आए हैं, लाल रंग के हैं, ये इनको बहुत ज़रूरी आंख की जांच कराने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बारी आंखों के पर्दे हटने की वजह से या पर्दे पे खून आने की वजह से ये फ्लोटर्स जिनको कहा जाता है ये एकदम से आ जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आंखें लाल होती हैं तो कहते हैं आंख आ गई है, ये क्या होता है? क्या आंख आना भी?
0: ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, एक भ्रांति है कि लाल आंख हुई और हमने दवाई जाके दुकान से ले ली। हर लाल आंख आंख आना नहीं होती है। आंख में लाली आने के बहुत सारे कारण होते हैं। काले पानी का अटैक हो सकता है, आंख में सूजन हो सकती है, पुतली पे सूजन हो सकती है, खून उतरा हो सकता है, आंख में चोट हो सकती है या फिर आंख आ सकती है। तो हर आंख लाल होना आंख आना नहीं होता है, और इसके लिए दवाई जो है वो दुकान से जाके नहीं लेनी होती है। पहले ये समझना होता है कि लाली आंख में आई है, उसका कारण क्या है, और उस हिसाब से हमें दवाई लेनी होती है।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, जो चश्मा लगता है आंखों की रोशनी के लिए हम लगाते हैं, क्या उसकी आदत भी बन जाती है या छूट सकता है?
0: चश्मा लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम चश्मा लगाते हैं तो हमारा चश्मे की आदत बन जाती है और हमेशा हम चश्मा का नंबर बढ़ता रहता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसकी वजह से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को चश्मा नहीं लगवाते हैं और या फिर देर से लगवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे आंखों को चश्मे की ज़रूरत है तो हमें फ़ौरन चश्मा लगाना चाहिए। चश्मा लगाने ना लगाने से आंखों में दर्द, आंखों में लाली, आंखों में पानी, खुजली वाली समस्या, ये सारी होने के साथ साथ हमारी आंख की रोशनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। एम्ब्लायोपिया या लेजी आई की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए चश्मा, जैसे ही पता चलता है कि किसी बच्चे को चश्मा लगा है, उसी समय चश्मा लगाना चाहिए। चश्मा सही समय पे लगेगा तो आंखों का विकास के साथ साथ दिमाग का विकास भी बेहतर होगा, और चश्मे का नंबर लगाने से नंबर बढ़ेगा नहीं, ना ही उसकी ऐसी आदत पड़ेगी। तो इसलिए सही समय पे चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आंखें प्यारी हों, छोटी हों, बड़ी हों, और उनमें अगर सूखापन होता है तो आप क्या कहेंगी?
0: छोटी मोटी आंखों में सूखापन आना एक नॉर्मल सी बात है, और इसका हमें इलाज करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आंख में सूखापन भले ही एक छोटी सी समस्या है, लेकिन मोबाइल आने की वजह से, एसी का इस्तेमाल होने की वजह से, कूलर का इस्तेमाल होने की वजह से, या बहुत तेज़ लू या गर्मी या गर्म हवा आँख में जाने की वजह से ये समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से हमारी आँख में सूखापन होने लगा है। ये सूखापन शुरुआती दौर में तो बहुत मामूली सा होता है, लेकिन अगर ये बढ़ता है, यानी कि मॉडरेट या सीवियर ड्राई आई, हमारी आंखों को बहुत ही और क्वालिटी ऑफ विजन और लाइफ ऑफ विजन को बहुत ही इफेक्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी आंख में सूखेपन या छोटी से छोटी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने आंखों के बारे में बताया, आंखों की रोशनी के बारे में बताया, मोतियाबिंद के बारे में बताया, बच्चों में चश्मा लगता है उसकी आदत छूट जाती है, ये भी आपने बताया। तो अब बात करते हैं नेत्रदान के बारे में। लोग नेत्रदान करते हैं, बड़े फक्र से करते हैं कि हमारी आंखें दूसरों के काम आएंगी और मेरी आंखें जिंदा रहेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी नेत्रदान के विषय में? पूरी की पूरी आंख दान की जाती है या कुछ और? जी,
0: आई डोनेशन का मतलब है कि पूरी आंख बदली जा सकती है। ये बिल्कुल एक मिथ है, यानी कि भ्रांति है। आई डोनेशन में पूरी की पूरी आंख निकालकर पूरी की पूरी आंख नहीं रखी जाती है, ये मात्र

0: कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि आंख में जो दो हिस्से होते हैं, यानी कि सफ़ेद हिस्सा और काला हिस्सा जो दिखाई देता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो काला हिस्सा है उसको निकाल कर उसको बदला जा सकता है। इसमें पीछे का पर्दा, लेंस, आंखों की नस, ये सब नहीं बदली जाती है। सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को ही आई डोनेशन या आई आंखों का प्रत्यारोपण कहा जाता है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद रोशनी वापस एकदम नॉर्मल जैसी हो जाती है। ये भी एक भ्रांति है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में हम दूसरे की आंख से कॉर्निया को निकाल कर आपकी आंख में लगा रहे हैं, तो ऐसे में रोशनी पूरी बनकर नहीं आती है, कम रहती है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है, समय लेकर बढ़ती है, लेकिन आंख में इतनी रोशनी ज़रूर आ जाती है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम आराम से कर सकते हैं। आंख में एक बारी अम्ब्लायोपिया या लेजी आई जिसको कहते हैं, वो अगर हो जाता है तो वो उसका इलाज संभव है और रोशनी पूरी आ सकती है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। एम्ब्लायोपिया यानी कि चश्मा ना लगाने की वजह से जो पर्दे का विकास नहीं हुआ है बचपन में, जिसको हम आम भाषा में लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहते हैं, इसका इलाज कुछ हद तक ही संभव है और एक समय है, यानी कि 9 से 10 साल तक का समय है, तभी संभव है। उसके बाद इलाज संभव नहीं है और रोशनी चश्मा लगाने से या किसी भी ऑपरेशन करने से वापस नहीं आ सकती है। इसलिए एम्ब्लायोपिया जैसी गंभीर बीमारी या चश्मा ना लगाने की वजह से पर्दे की कमजोरी रह जाना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी चश्मा लगाकर इलाज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, यानी कि बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने से हमारा पर्दा ख़राब हो जाता है, ये आधा अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। जब भी हम डिजिटल डिवाइसेस देखते हैं तो उससे हमारी आंखों में आई स्ट्रेन होता है, आंखों पे जोर पड़ता है, आंखों में सूखापन आता है, चश्मे का नंबर भी होता है, लेकिन हमारे पर्दे पे यानी कि रेटिना पे डैमेज नहीं होता है डायरेक्टली। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सिर्फ हमारे खाल पे इफेक्ट करती हैं, यानी कि स्किन पे इफेक्ट करती हैं। जो सूर्यमंडल में अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे सिर्फ खाल पे ही इफेक्ट नहीं करती, इससे हमें सिर्फ टैनिंग ही नहीं होती है या रंग काला नहीं होता है, बल्कि हमारी आंखों में भी इनका असर होता है। इसीलिए 100% यूवी फिल्टर गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर काला चश्मा धूप का चश्मा नहीं है। यूवी एक्सपोजर से हमको मोतियाबिंद, आंख के सरफेस की समस्याएं यानी कि ऑकुलर सरफेस डिजीजेस जैसे कि आंख में सूखापन और ARMD यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों के लिए सुरक्षित नहीं है और कड़ाके की धूप में हमें 100% यूवी फिल्टर गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के ऑपरेशन से और काला पानी के ऑपरेशन से क्या रोशनी आ जाती है? जी
0: ये आधा अधूरी बात सही कही आपने। जो रोशनी मोतियाबिंद की वजह से कम है वो रोशनी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आ सकती है, लेकिन जो रोशनी काले पानी की वजह से ख़त्म हुई है वो रोशनी वापस नहीं आ सकती है। काले पानी का जो भी इलाज चलता है वो इस मकसद से चलता है कि जो रोशनी बची है उसको हम बचा कर रखें, जो रोशनी ख़त्म हो गई है वो रोशनी वापस नहीं आती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या मोतियाबिंद का इलाज चश्मे से हो जाता है? हर इंसान को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या ऐसा है डॉक्टर साहब?
0: मोतियाबिंद का इलाज चश्मे से हो जाता है और हर इंसान को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, ये भी सच नहीं है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है, शुरुआती दौर जब मोतियाबिंद की होती है उस समय चश्मा लगाकर रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, उसको हम ग्रेड 1 कैटरैक्ट कहते हैं। उस दौरान चश्मे से फ़ायदा हो जाता है, रोशनी बनकर आ जाती है, तब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है, जब वो ग्रेड 2 पहुंच जाता है, तब मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है, किसी भी ड्रॉप या चश्मे से संभव नहीं है। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद चश्मा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारी आँख वैसे ही हो जाती है जैसे पहले की होती थी।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो हमारे श्रोता अक्सर सोचा करते हैं कि ऐसा होता है शायद।
0: ये भी एक आधे अधूरा सच है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद इस बात पर निर्भर करता है कि हमने लेंस कौन सा चूज किया है, हमारी आंखों की क्या क्या रोशनी की ज़रूरत है, कि मरीज को दूर के साथ साथ पास का देखना है या नहीं देखना है, और उसी तरीके से हमने लेंस को चूज किया है या नहीं किया।

0: है, आँख में एस्टिगमाटिज्म है या नहीं है, यानी कि आँख की बनावट कैसी है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम सही लेंस का चुनाव करेंगे तो ऑपरेशन के बाद हमारी रोशनी पूरी आएगी। अगर हम कोई सा भी लेंस डलवा लेंगे बिना ये समझे कि आँख में किस लेंस की ज़रूरत है, तो फिर हमारी रोशनी पूरी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। आई डोनेशन कैन बी डन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी कि किसी भी उम्र में हम आँख को डोनेट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये बात सही है कि किसी भी उम्र में आंखों का दान किया जा सकता है?
0: ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी उम्र में और कोई भी व्यक्ति अगर कॉर्निया उसकी सही है तो वो कभी भी डोनेट कर सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की आंख के बारे में क्या कहेंगे, चेकअप के बारे में क्या कहेंगे आपकी, उनकी आंखें कब चेक करानी चाहिए?
0: बच्चे अगर सारा काम कर रहे हैं तो उनको आंख के चेकअप की जरूरत नहीं है। ये बात थोड़ी सी गलत है, आधा अधूरा सच है ये। बच्चे अगर सारा स्कूल का काम सही से कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तिरछापन नहीं है, भेंगापन नहीं है, आंखों से पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी कई बारी चश्मे का नंबर और अम्ब्लायोपिया जैसी समस्याएं होती हैं जो अक्सर बच्चे बता नहीं पाते हैं। इसलिए बचपन में 5 से 6 साल की उम्र में एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन बच्चों का होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोतियाबिंद के बारे में, काला पानी के बारे में, चश्मे के बारे में, लेंस के बारे में, बच्चों का चेकअप कब करवाएं इसके बारे में, तरह तरह की सभी जानकारियां दी आंखों से संबंधित। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नमस्कार।
1: और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए रविन्द्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर।

आज के प्रोग्राम में भीगे भागे मौसम में मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त संजय। और लेकर आ गए हैं आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। आपके इंतजार को यहीं पर रोकते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद। साथियों, सबसे पहला जो गाना है आपकी पसंद का वो है सिलसिला फिल्म का, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, सुनना चाहे आप सभी ने। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश गोर्धन फरसाराम श्यामलाल घनश्याम बाबू गौरी और हसन सिक्का। बहेड़ी बरेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी और उनके बहुत सारे साथी। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र के रितिका मिस्कीन वानी चंद्रकला गणेश। साथ में है काशीनाथ संगीता आरोही प्रियांशी और उनके बहुत सारे परिवारीजन। गांव नवागांव मुड़ही पार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू रुक्मणी तेजेश्वरी कुशाल और साहू परिवार के बहुत सारे लोग।

पीरजादा मिराज और उनके बहुत सारे साथी, कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंगेल, धमता ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंगेल, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और अयान बाबू, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, पद्माटाकी नेपानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल नीति सुरभी अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबाही तहसील सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के, अनिल कुमार घुट के वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश, गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश के मुकेश गौतम, सुनील अमन और शालू गौतम, महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक मोहम्मद दानिश, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनिस खान और सोफिया खान, तो अब हम सुनवा रहे हैं आपको, आपकी पसंद सुनिए और इंजॉय करिए।

0: सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
1: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
2: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
0: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और अब 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से दूसरा गीत आपकी ही पसंद का। फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं। सुना जाए गढ़ी कोटवाहा पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन अकरम, सानिया मोहम्मद इलियास, मुसाहिद अक्सा, आयशा और उमर अंसारी, साथ में है समीना अंसारी। वीरपुर पोस्ट बिलसड़ अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश के विपिन कुमार शाक्य, सपना रविंद्र, राजेश, रमेश चंद शाक्य, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके मम्मी पापा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनिस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। धोतार जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया,

दिशानी और निमित आहूजा। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश के भेरूलाल बाक्तरिया धाकड़, भूला प्रवीण रियांश और प्रतीक बाक्तरिया।

नागपुर महाराष्ट्र के कमल स्वाने, डॉक्टर हाजी अफजाल मलिक, संदीप रामगढ़ कैंट झारखंड से, निप्पी स्वाने, मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली के जीशान वारसी, इमरान शेख और रिहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, दूलापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, साथ में है लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। रायपुर छत्तीसगढ़ के विनोद बंडलकर और वीणा बंडलकर, साथ में है द्विविधा बंडलकर। ऋषिकेश उत्तराखंड के, अर्पित रावत, गंगा सिंह रावत, अनिल बडोनी और परमार जी। कहते हैं ना का जहां हर गीत किसी अपने को संदेश बन जाए, चलिए इसी संदेश को देते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत। हमें उम्मीद है आप गाने को एंजॉय करेंगे।

हसन, बाबू अहद मिफ्रा और बेबी चाहत। साथ में है सादिया। मीरगंज बिजली घर के पास से आदर्श दिवाकर, लव ओमेदपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़, राजस्थान के अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह, सागर पवार, भानु प्रताप और पवार परिवार के सभी लोग। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महाजबी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष और बब्बू डब्बू। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के जगदीश धाकड़, नायमा, रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी।

कहते हैं ना कि जहां सुर होते हैं वहां के पल रुक जाते हैं, यादों से भरा हर कल हमारे वर्तमान में आ जाता है और हम उसको जीने लगते हैं। आइए सुनते हैं ये गाना।

जिंदगी प्यार का गीत है, ये गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है सौतन किशोर कुमार साथियों की आवाजें। सुनना चाहे प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, ये हमारे श्रोताएं कमर कॉलोनी बड़बाहा खरगोन मध्य प्रदेश के। बेड़ी मध्य प्रदेश के हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। जबलपुर मध्य प्रदेश के ही अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, रितु, कृषिव और वेदा सिंह। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। जय जिनेन्द्र श्रोता सिंह परभणी महाराष्ट्र के, रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास और रोशनी बारासा। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज और सरफराज, साथ में है फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। चनोरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के बनवारी लाल, कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, साथ में है रवि, आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा। रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सिरसा हरियाणा के सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। चरगवा जबलपुर से सुरेंद्र कुमार शर्मा।

काठ रोड लदावली से अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश आकाश, मनीष वर्मा, रेहान खान, बेबी बैदेही जोशी और साथ में हंस का जोशी, अकीता पायल, लक्ष्मी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन, बक्सेना दातागंज बदायूं के बिमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज, रावर करनाल से विनोद लखनपाल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी, झारखंड से रामचंद्र गुप्ता, शोभा, निखिल, आर्यन, मयंक, रुद्र, लवली, एलबी गुप्ता,

तेरे संग जीना तेरे संग मरना, आइए सुनते हैं गाना। फिल्म है नाच उठा संसार, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी साथियों की आवाजें। सुना चाहे सतीश अनेजा बिमला अनेजा चंडीगढ़ के। अनूपगढ़ राजस्थान के मंगल जनागल रोशनी अंकुल इंदु और सुनील जनागल। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश के मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमराना नाज नवाजिश शेख दानिश और अमन आफरीदी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रवींद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाडो कोयल। नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुग्गू भाभे कौशिक का परिवार के सभी लोग। सहारनपुर से राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक और हर्ष शर्मा। जनकपुरी दिल्ली से प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गभ्याणकर राही सरिता प्रणीता और अर्जुन गभ्याणकर। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लव्या आरब और एस के पप्पी। दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि पारसमणि पुष्पेन और नोखेलाल वर्मा। रतन माला मौर्य मुकेश प्रिंस प्रियांशी पुष्पा गौरव चंद प्रकाश। ये हमारे श्रोताएं कटरा चांद कहां पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर के। पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत के। मुस्ताक सादिक मुस्ताक अहमद मोहम्मद अलकमा खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री।

पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक तिवर्ता डबरीपारा कोरबा छत्तीसगढ़ के महेंद्र प्रताप मरकाम जय मरकाम जुआगेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र महेंद्र सिंह सहोत्री और मरकाम परिवार के सभी लोग कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरू साइनासन अक्सा नाजिया इब्राहिम सद्दाब अदीब और आफिया मोहाली पंजाब के गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसबीर महक प्रीत कौर

लीजिए अब सुनिए आरजू फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। आपकी पसंद आपके ही साथ मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, धाड़ी नाटोरा महाराष्ट्र के श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल बाठे, नंगलखेड़ा फागबड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीश और राहुल शर्मा, बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान।

चरोदा बार नबापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू और ज्योति ठाकुर। चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत खरगोन, मध्य प्रदेश के कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नव उदित सिंह चौहान, वैभव पाल सिंह, ध्रुवी और प्रदुम्न चौहान। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लाडो, लवली, रजत, लव खन्ना, कुश और समस्त खन्ना परिवार। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। शनि बाजार कस्बा उगेती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियाल और कायरव गुप्ता। नेहरू चौक पैठण से यहां से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद सोनल, सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज, पंकज, प्रिंस, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय। परिमहल कासगंज से अभा खान, नबील खान, सैमुअल कुमार और असलम।

झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। साथी सुनना चाहे लसूड़िया, तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश के। गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश सिंह, चंद्र, डागी। नाईबाला, हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका। राम सिंहपुर, श्रीगंगानगर, राजस्थान के अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। अस्पताल रोड, विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश के चंद्रेश गौहर, वंदना मयंक और तन्वी गौहर। साथ में है जयपाल यादव। हिंगोली, महाराष्ट्र के शाहजी बोर्ड के नंदा, हनुमान, उत्तम। लाल कुर्ती रोड की कैंट के राजेश, मंजू, निशांत, कोच की दीपाली, युवान और आर के राजा। अलखनाथ मंदिर बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र देव, योगेश कुमार, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, राज महावीर कश्यप, श्रीराम राठौर, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम और उनके बहुत सारे मित्रगण।

अहमदगढ़ मंडी से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जाबिर अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन शकीला,

दिलों को जोड़ता गीतों से नाता, हर धुन में छुपी है एक मुस्कान, संगीत वही जो दिल की जुबान बन जाए, हर फरमाइश का अपना एक एहसास बन जाए।

200 और सुनेंगे क्या? फिर सुनाएंगे, क्योंकि अब प्रोग्राम आपकी पसंद का समय लगभग समाप्त हो रहा है। आज का प्रोग्राम जैसा भी लगा हो, अगर आप लिखेंगे तो हम और भी ज्यादा रोचक तरीके से प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अपने दोस्त संजय को दे इजाजत, जाइएगा मत, क्योंकि सब रंग प्रोग्राम बस कुछ ही क्षणों में आपके बीच आने वाला है।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से अब 11 बजे हम लेकर आए हैं प्रोग्राम सबरंग। प्रोग्राम की पहली पेशकश अनूप जलोटा और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए।

साथियों, इस भजन के बाद प्रोग्राम सबरंग की अगली पेशकश गजल के रूप में आवाज दी है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने, आइए सुनते हैं।